करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत जगतारे भजन करो।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: राम राम मनीष भज्जा, कितने चली जा रहे?
2: हम कितों नहीं जा रहा, बस इतना ही थे और हम सोच रहे थे कि हम अपने साथियों से एक मुलाकात कर ले में।
1: हाँ।
2: तो हम अपने साथियों से सबसे पहले राम राम करण चाहतेंगे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम को सुनत हेंगे।
1: हाँ, अच्छा,
2: कैसे जो देख रहा है कि कार्यक्रम तो सुनत हेंगे हमारे साथी, लेकिन हमें एक शिकायत है कि साथियों से।
1: अरे, तुम्हें साथियों से शिकायत है?
2: हाँ, फोन नहीं करत हेंगे।
1: अरे, तो घबराबी वाली बात नहीं है मनीष भैया। देखो, तुम का है कि जल्दी भाव खो जाओ दे, वो तुम्हें जा लगत के वो एक कहावत है ना, तुरंत दान महाकल्याण। तुम सोचत के अब हाल हमने प्रोग्राम चला।

0: देखो और अब यहाँ अपने श्रोता साथियों के फोन आ जावे
1: हाँ।
0: तो ऐसा नहीं होते ही। देखो तुम्हें अगर हम ये बात की खुशी एक बता देवे कि अपनो जो प्रोग्राम पहले का हो तो कि सिर्फ रेडियो पे आते तो, है सो रेडियो पे ट्यून करते आदमी को कि देख परेशानी होती लोग बाग सुना थे लेकिन फिर भी मेहनत करके पहाड़ियन पे चढ़ के पेड़न पे लगा के एंटीना, लेकिन अब का है ऐप से भी सुनते ही। और सबसे अच्छी बात जो हम बता दे कि पहले अपन और इनकी जो पोस्टें जाऊती हती प्रोग्राम की जानकारी जब देते सो में कमाई लाइक आते जो लाइक करे ना पसंद करते जो को सो उनकी संख्या जो हती कम हती, लेकिन अब अपन देखो तो उनकी संख्या बिलात बढ़ गई।
1: तो तुम्हारा क्या देखो जो मतलब के आदमी अब हमारे श्रोता साथी सोशल मीडिया पे ज्यादा अपडेट रन लगे हैंगे, काहे से सोशल मीडिया को अभी जमाना है वो और उनके पास एंड्रॉइड फोन रहेंगे और जैसे ही पोस्ट देखी और ऐप भी हमारे बहुत सारे साथियों ने डाउनलोड कर ले हैं तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कैसे हम हमारे साथ जो स्नेह आपको बनो है वो और आप जो आपकी स्नेह से हम जो कार्यक्रम तैयार कराथेंगे आपके समय को देखा दबाए आपके जलवायु परिवर्तन को देखा दबाए सारे चीजन को देखा दबाए हम अपने श्रोता साथियों को कार्यक्रम जो बनाथेंगे उनको भी बड़े अच्छी तरीके से सुनाते हैं और हमें फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताते भी हैंगे।
0: बिल्कुल अब देखो आपने व्हाट्सएप की कही हैगी तो हम व्हाट्सएप पे भी बता देवे कि रात के ना वे दिन रात देख रहे हैं कि क्या बज रहा है फोन लगा दो अपने साथी पे तो
1: अच्छा।
0: काहे के दिन के काहे नेटवर्क तो बिजी जाऊते ही और अपन औरन को जो रेडियो बुंदेलखंड जेते बनो है गो सुबह तक ऐसा स्थान है गो के उते टावर ने कम आउते ही है सो ई वजह से भी अपने साथी फोन तो लगा उठेंगे लेकिन वो अपन तक नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे में आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं है।
1: ठीक है भैया, तो सबसे पहले साथियों को बता दे वो चाहते हैं कि आज के जो कार्यक्रम शुभ कल में हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके रेडियो साथी मनीष
0: और भैया हमें तो आप चिंता ही हुजो हमारा नाम है वर्षा
1: और साथी रहो आप सुन रहे कार्यक्रम शुभ कल को।
0: श्रोताओं यह कार्यक्रम लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम की 13वीं श्रृंखला है।
1: वर्षा आज के हमारे जो कार्यक्रम शुभ कल में आज अपन बैरू भौजी को भी सुनवा है साथियों को।
0: अरे बिल्कुल ये नहीं सुनवाना है बैरू भौजी को तो जमानो ही है वो काहे कि अपनी बैरू भौजी जो बातचीत करती हैं वह 101% सत्य हो जाती और हम तो लोग उन्हीं की बात मान लेते। सो बैरू भौजी को अपन सुनेंगे और अपनो पर्यावरण को देखत भाई अपन पे बातचीत अपन हो कर वो जरूरी है वो। तो देखो हम तो जा कहेंगे कि पर्यावरण को बचावे के लाने छोटे से छोटो अगर उपाय भी आप कर रहे होगे तो समझ लो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप जो ना सोचो कि आपने अरे छोटो ही सो काम करो हम काई खो बतावे, आपको बताने है गो कि पर्यावरण के लाने अपन को कछु ना कछु करने आए है गो और जो अपनी प्रकृति हैगी यानी नेचर हैगी तो जा अपने हिसाब से नहीं चलेगी अपन को बल्कि ई के हिसाब से चलने पर है वो।
1: बिल्कुल सही कही आपने, कैसे हम जो देख देंगे कि अगर अपन शादियन में भी जाते हैं दोस्तन से मिला थेंगे तो अपन सेल्फी खींच के डाल देते और अगर अपन अच्छो काम कर ही रहेंगे जैसे पर्यावरण को बचावे के लाने आपने पेड़ लगा दा है गो या कोई को समझा दा है गो तो बाकी एक फोटो खींच के एक अपने फेसबुक पे डाल दे या इंस्टाग्राम पे डाल दे जैसे लोग देख के और जागरूक होंगे कि भाई साहब ये संग साथी वाले हमारे भैया हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचावे के लाने। तो अपन हो ऐसो प्रयास अथक प्रयास करने है कि जैसे एक दूसरे से चेन जुड़ जाएगी तभी अपन जो कार्यक्रम को एक सफल बना सकते हैंगे। एक मुहिम जो हमने सोची है थी कि आने वाले समय में हम अपने साथियों को इतना जागरूक कर दें कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भी समझने लगे और संगे संगे पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है वो बाकी बचावे के लाने भी कम से कम सोच उनकी परिवर्तन हो जाएगी।
0: आपने देखो जा एक अच्छी बात कही हैगी कि फोटो डारबे को जमानो है गो तो ये पे एक बात और हम क्या वो चाहेंगे कि जैसे मान लो को जन्मदिन मनो ठीक है जन्मदिन मनो सो उनने का करो बढ़िया केक काटो डीजे बजो और का कहती पार्टी अच्छी मनी सो सब जने का कहे फोटो डाल देते ही और वीडियो डाली फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे फेसबुक के स्टेटस पे फोटो डाली सो पे जो देखत कि कितने लाइक मिले और कितने कमेंट मिले ठीक है।
1: सही बात।
0: अब मान लो बात चीज हमने देख ली है तो हमने देख ली तो हमारे दिमाग में का चीज चले एक चीज चले कि अब हमारा जन्मदिन आए तो हम इसे और अच्छो करें
1: जिसे
0: कि हमारी फेसबुक पे इसे ज्यादा लाइक और कमेंट बढ़ गए। तो अगर अपन अपने पर्यावरण को बचावे के

0: महिलाएं भी ऐसी कोनो उपाय कर रहे हैंगे, तो आप भी उनको सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालो ताकि आपके पोस्ट को देखें। हो सका थे कुको एक नई उम्मीद मिलवे, नई दिशा मिलवे कि अरे भज्जा इकेला ने भी अपन को काम करने आउते। जैसे अपन हंसी खुशी के पल तो सभी जने अपने दोस्तन के संगे बांटा थेंगे, तो अगर पर्यावरण कहे कि अपनो ही सबको है वो है ना, और इसे अपन और जिंदा हैंगे, अपन और खुली हवा में अगर सांस ले पा रहे तो इको सांस लेवे के लाने बनाने भी तो है अपन को शुद्ध बिल्कुल एकदम। तो ऐसे कि जो पोस्टें अपन फालतू की करते ही काम की भी पोस्टें करवे।
1: सही बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही हैगी। और संगे संगे एक बात हमारे मन में और चल रही हैगी, कैसे जब हम सवेरे आ रहे थे तो जान जो खुले जानवर नहीं रहेंगे रोड पे फिरत रहेंगे, तो वे पन्नी जो रहते हैं पॉलीथीन उनको खा रहे थे, तो उन्हों खावे से उनके स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर बताते कि यदि पन्नी जानवर खा लेतेंगे तो उनके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होते है, और संगे संगे हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होते है।
0: अरे नुकसान की ना कहो मनीष भैया, तुम पता क्या होता है, अगर जानवर ने पन्नी खा ली तो भी उनकी आतन में चिपक जाऊती।
1: हाँ,
0: और भी निकरवे को तो कोनो चांस रहते ही नहीं है। तो इसे अपन पन्नी को कम से कम कितने अपन इस्तेमाल कर सकते थे ऊपर अपन को ध्यान देवे की जरूरत हैगी।
1: बिल्कुल सही कही हैगी, बिल्कुल ध्यान देवे की बिल्कुल जरूरत हैगी। और ध्यान की बात आई तो अपन वेर भौजी को सुन लेते हैंगे, वे भी कछु किया वो चाह रही है पन्नी को रोक लगावे के लाने, उनने भी बहुत अच्छे प्रयास करो है। तो चलो अपन बैरव भौजी को सुनाते हैं, लेकिन कछु देर बाद सुनाते हैंगे, एक लोकगीत को अपन सुन लेते हैंगे, बाकी बाद कार्यक्रम में हम बैरव भौजी को सुनेंगे।

0: अब मनीष भैया अपन और अन्य अभय दिनेश मस्ताना जी और उनके साथियों की आवाज में इन्होंने से लोकगीत को सुनो है वो, और हमें लगा था कि आप समय ना गवात भाई अपन को बेरो भोजी को भी सुन लें चज्जी का, भी अपन को बहुत ही उम्दा जानकारी दे रही हैंगी।
1: तो चलो अपन सुनते हैं बेरो भोजी की नाटक को।
2: ओ कल्लू के पापा हमें लगा निकल गए, मैं रात भर चिल्लिया चिल्लिया के हर जात, भुनसारे जल्दी आदत जो भुनसारे जल्दी आदत जो लाइट भी चली रख, हाँ सोते जाने कितने तीनों बैठी रहते ही, अब आन दो रुक जाओ फिर मैं बता दूंगी, मु इतनो काम डरो मु आज सब्जी भाजी नहीं है बिल्कुल घर में, क्या गोले बना लूं मैं अपने घर में, मेरी तो समझ में नहीं आती कि मैं करूं का, इनके माँ इतने परेशान हो गए, ओ कलुगा कितने मर गए ऐसे ही मोड़ी मोड़ा हो गए बिल्कुल।
3: तुम्हें तो उठत बैठत गलत रहे चिज्जित, का बात है बता काय को बुलाओ?
2: मैंने काय को बुलाओ?
3: और कल गया तो गाओ तो तीरथ,
2: तो मैंने तुम्हें बुला भी खिलाने गई थी क्या को, अब घर में कछु नहीं है खावे, मैं क्या करूँ बताओ, मैं क्या बना लूँ, मैं तो पूरी जिंदगी
3: तो उसे तना कछु कर सोते हैं तो फिफ्टी बताने लगा।
2: हाँ तुम्हें तो यानी फिफ्टी दिखा रहे, मैं बताऊँ कछु नहीं है घर में आज खावे, मैं क्या बना लूँ मोड़ी मोड़न खिलाने।
3: अरे तो ऐसी कही तो जात कछु बात की,
2: तो मैंने रात में कही

0: लगतेगा तुमसे।
1: अब मैं सो गाओ तो रात के हाल था को तू पतो ही है, चाहे इसे लगी बड़बड़ा भी है, रात है तो पानी भरा भी जाते।
0: तो तुम पानी भरा रहे, मैं घर को काम तो कर रही होंगी, कौन का चू मैं परिरत होंगी।
1: अरे तो बताई तो जात, मैं सवेरे तो आ गया तो खाई नहीं गई, अब मैं लाया सब।
0: अब तो मरंदो तुम पानी को चले जाओ, मैं चली जाऊंगी लालाजू के संगे।
1: अब तेने किचन गार्डन तो लगाओ तो बाँ में नहीं हो सब्जी।
0: वो तो जाएगी, अब का रोज के रोज मेरे बाद ना बेच गई थी इकट्ठी, अब पानी डाल दो फिर से वही जाओ तुम।
1: बेचने की जरूरत घर चाहे हुए चाहे ना हुए।
0: तुम्हें पूछ तो नहीं थी तुमसे कि मैं बेच दूं कि नहीं बेच दूं, मोह पे चढ़ यार बिल्कुल।
1: अरे तो अब जितने पैसा जैसे बेचवे से मिली थी, अब इनसे फिर से खरीद लो तनक मनक।
0: तुम्हें पैसा खो रो रही क्या?
2: अरे अरे का होगा भाजी, काय लगे भौजी घुमारे हो, कल कह रहा था कि मम्मी घुमा रहे पापा काय मार रहे होता।
1: तू तो तनक में खबर पड़ जाए तो मूड पे चढ़ाए जाए।
2: अरे भज्जा ऐसी कछु बात नहीं है, क्या हम तो तनक जो देखा था के का हाल चाल चल रहा अपनी भौजी के भज्जा को का घर को कैसो काल चल रहे।
0: तो लाला जी वो मैं इनसे कह रही थी कि बिल्कुल सब्जी भाजी नहीं खाती, तो अब लाला जी मैं का करूं, मैं का बना लो रोज की रोज, तुझे मोही पे बड़े बिल्कुल 24 घंटा मोही पे गुस्सा होता रहता बिल्कुल।
1: देख ले जाए तो केवल बहानो छे जिद लड़बे को।
0: कबे लड़ी मैं बता कहूं, लड़ी आज तो लड़ी हो।
1: अब कैसे चीप के बता रही, देख ले
2: तेरे शांत हो जाते काय लगी भज्जा ने तनक। अब हार थको है तो आदमी को तनक कछु के है तो चेट तो जरूरी आदमी। अब
0: हाउ सब रे मोही पे उतरत बिल्कुल गुस्सा, मैं तो बिल्कुल ऐसी आई होंगी।
1: अरे अरे चुप हो जा, अब नहीं रो। हाँ सही तो कह रहा हो, और वो
0: हाँ वो यान तो आप सही कह रहे हैं, तुम दो जाने क्यों गए होंगे, अब मैं को है वो पिछले भी।
2: अरे भाजी ऐसी कछु बात नहीं है, को उसे नहीं मिल रहा जो है की। अब जैसे कोनो आदमी हार थक हुआ तो बात पूछे के का पानी पीने के का खाने, और तुम और उल्टी गाड़ी में सुनाने लगो तो आदमी को दिमाग खराब ना हुए।
0: अच्छा और मैं दिन भर की काम कर रही, सुमे कछु नहीं है, मैं को नहीं पूछे भज्जा ने एक बार पूछे की मैं दिन भर का करत होंगी।
1: हाँ मुझे तो पतो है कि ते घूमे भी जात लालाजू के संग में। अब तो शांत रहिए, अगर रोज गाई अगर मुझे पतो चल गाओ फिर मैं शाम के बताओ तुझे।
0: हाँ मुझे काकन ने रोके, मुझे सब आराम से मिलत रहे, सो मुझे काकन ने चार बातें करके।
1: अब ठीक है लालाजू तो है, सो इनसे मंगा लीजिए जो कमी पड़े सो।
0: लालाजू देख लो तुमने अपने भज्जा को, जी है इनके हाल।
2: अरे भौजी घर में ऐसा नहीं हो, तुम शांत हो जाओ करे, भज्जा कहूँ गुस्सा हो तो तुम हो जाओ शांत, कहूँ बे हो जाओ करे शांत, ऐसे चलत घर बार।
0: हाँ तुम हो सो तुम हम ये डॉक्टर लगे होंगे, अब मैं बाजार जा रही थी। हाँ
2: बाजार जाने?
0: हाँ
2: अरे बाजार तो मैं जा रहा हूँ, तो वो कल्लू पहुँच गया के मम्मी को मार रहा पापा है, मैं तो ऐसी सुनी से दो वक्त आओ तो रोटी नहीं खा पाई।
0: कहाँ ले भी जा रहे थे, मुझे तो सब्जी ले भी जाना लाला जी, चलो मैं तुम्हारी संगत।
2: अरे तुम राशन ले आने तो घर को, धन में कह रही थी कि वो चून बढ़ा गो तो एक बोरी ले आने, चून मुनो वो तनक मसाले ले आने थे।
0: हाँ ठीक है तो फिर चलो, फिर मैं अभी चल रही संगत नहीं तो चलेंगे अभी तो जाने मंडी तक। ले लो लाला जी तुम ले लो, हम ले तो तैसा सब्जी।
2: हाँ भौजी मैं बगल की वापस हट की दुकान से जो सौदा लेता हूँ तनक, मसाले लेने तो तनक वो लेने तो आटो लेने तो
0: ले आओ, ले आओ ले आओ और मैं ला ले खाऊंगी। भज्जा जा सब्जी तो क्यों का भाव दई? अच्छा आलू है का भाव दई? 10 रुपया किलो दे दू लियो, थैला में डाल दू लियो डाल दू।
2: अरे भज्जा जल्दी कर बो तनक भौजी, और हमें चेक चेक करने लगे कि अभी टाइम का, जल्दी दे दो तनक मसाले दे दो। अब काय में दे रहे? अरे पन्नी ने मिला तुमसे कितनी दार कही, अपन घर से हम हमेशा झूल ले लिया है, पन्नी ने मिला जल्दी भौजी और हल्ला करे, ले आओ जल्दी रख दो, ले जो पैसा अपने, चलो भौजी ले ले हमने सब्जी।
0: का कह रहे लाला जी, अबे और रुकने कितने टाइम और रुकने?
2: अरे लेब गए मसाले मसाले सब जो ले लो 5 किलो।
0: लेब गए?
2: हाँ लेब गए।
0: अच्छा हाँ काय में रख लो सामान?
2: अब जो पन्नी ने रख लो काय में?
0: लाला जी मैंने कही थी बाद ना भी तुम्हें समझाई थी कि पन्नियन में अभी आधी दूर तक जाने से पूरी फट जाने, और दूसरी अपना जो कितना नुकसान हो रहा है पन्नियन से पर्यावरण को, बाद ना मैंने समझाई थी तुम्हें।
2: अरे भौजी क्या करूँ, ख्याल नहीं रहता का के, तो घर से आते ना और जल्दी जल्दी में नहीं रहा।
0: जब लाला जी तुम ही नहीं कर होंगे तो फिर और को अपने और पड़ोस में तो को कर भी वालो नहीं है, बताओ जब तुम ही निकाह होती वो नहीं कर रहे। अब मैंने बांधना भी तुम्हें समझाई थी, आज भी कह रही, अब तो ध्यान रखियो कम से कम पन्नियन से। ये बात ना देखो तुम्हारी गज्जा ने खा ली थी पन्नी, मर गई थी बाकी नहीं मर गई थी।
2: हाँ जा तो यानी सांची कह रही, तो अब पक्के में ध्यान रखने आपकी राशे में, जब भी यहाँ तो झूला लेके।
0: हाँ तो लाला जू अब चलो चलेंगे, तो फिर ब्लैक टाइम होगा क्या, मैं तो आज पूरा भज्जा लड़ पड़े, सो दिमाग के सो खराब है, वो टेंशन में है पूरा दिमाग।
2: अब तो भाई जी अब जावा छोड़ते हैं, लड़िए ना आपते शांत रहिए घर है, हल्ला ना करिए।
0: देख तुम याद रखियो अगली बार से पन्नी ना ले आजू बाजार में,
2: अगली बार से तो झूले ही ले आऊं मैं।
3: हाँ मजा ही आगा राम धई, देरू भौजी जो बातें अपन को बताती हैं एकदम

0: सटीक रहती हैंगी और एकदम सही बात, बिल्कुल फिट बैठवे वाली बात बताती हैंगी। बहुत अच्छी बात लगा था मैं उनकी
1: सही कही कैसे उनने हमें भैरव भुआ जी के जा नाटक में तीन चीजें हमने समझी हैंगी। एक तो जा समझी है कि सबसे पहले हमारे जो महिलाएं हैंगी उनको बचत करवो बहुत जरूरी है गो।
0: अच्छा तुम जो बताओ हमें एक बात, महिलाएं नहीं खो का जरूरी है गो?
1: महिला नो जासन जरूरी है। यदि पुरुष उनके घर से बाहर चले गए हैंगे या कि तुम गांव में बैठे हुए चले गए हैंगे और सब्जी की जरूरत पड़ रही हैगी तो बैठी हैं ये लोग जब तक भी
0: काय बैठे हैं सुबह, उनके हाथ में भी तो जिम बात है ना पैसा टका
1: तो बोल नहीं आते।
0: आजकल मनीष भैया आप जो गलत बात कह रहे हैं, अब भी महिलाएं नहीं रही पहले जैसी के घर ही में रहती और आदमी को इंतजार करती कि जब भी आवे जब ही पैसा खे छुए जब ही हम कछु सामान लेवे। अब तो देखो पूरा हिसाब किताब उन्हीं के हाथ में रहते और अपनी बहनें खुद इतनी सक्षम हो गई कि वे अपने पांव पे खड़ी भी हो रही।
1: सही वो तो बात सही है कि कैसे अब बहुत सारी योजना और बहुत सारे समूह के माध्यम से महिलाओं को अपने सशक्त करो जा रहा है, बहुत अच्छे माध्यम है। और संगे संगे जो समूह के माध्यम से बचत की बात होती है और साथ में आपसी जो बातचीत होतेगी बात से आप बहुत सारी हमारी बहनों को बहुत लाभ भी मिलो है गो। जो बात तो हम क्या वो सही बात है तुम्हारी के हमारी बहनें सशक्त हो रही और मजबूत हो रही हैं, लेकिन अभी भी कछु गांव में जब प्रथा भी हैगी के वे जब तक उनके आदमी नहीं आएंगे तब तक वे घर से ना तो बाहर न करती हैंगी और सब्जी की तो बात छोड़ो वे उनके पास पैसा भी नहीं रहेंगे बच्चन की पढ़ाई के लाने भी वे उन हमारे जो मुखिया रहेंगे उन पे आश्रित हो जाती हैं। तो हमें बचत हमारे जीवन में बहुत जरूरी है।
0: तो देखो हम ही में जाके वो चाहूंगे कि बचत जानी कह सकत आपके केवल महिलाएं के लाने जरूरी है बल्कि सब जनन के लाने, हम सबके लाने बचत बहुत ज्यादा जरूरत होतेगी। हाँ तो दूसरी बात का सीखी,
1: दूसरी बात हमें जा सीखी के सब्जी तो देखो इतनी महंगी हैगी
0: बिल्कुल है।
1: और हमारे जो घर पे बहने बैठी रहती हैंगी तो वे एक काम कर सकती हैं, जैसे अपन ने पहले किचन गार्डन नहीं बताओ तो उन्हों कि किचन गार्डन को कॉन्सेप्ट बताओ तो कि किचन गार्डन हमारे बहने कैसे लगा सकते हैं अपने घर में। तो बा में का हो तो एक तो बचत होते है, बचत कैसी बचत होते है? जैसे पड़ोसी के पास गार्डन नहीं है या घर में आंगन नहीं है उनके पास तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ लगा के उनसे सब्जी ले सकते हैंगी। तो सब्जी का ऐसे बहुत महंगी रहतेगी तो अगर छोटी छोटी हमने पौध ले आके हाट से पौध ले आके बाजार से पौध लगा के अपने आंगन घर आंगन में लगा दिएगी बासे अपने परिवार को भी खर्चा चलेगा अपने पड़ोसी को खर्चा चलेगा और अपन को ताजी ताजी सब्जी अपन को मिलेगी।
0: जा तो आपने ऐनी नोनी बात कही हैगी कि अगर अपन घर में किचन गार्डन जैसी लगाऊ थेंगे तो जो छोटी छोटी सी चीजें रहती बहुत मामूली सी जैसे कि अपन ने टमाटर लगा लाए मिर्चें लगा लें धना लगा लाए और काके तई
1: भटा
0: हाँ भटा लगा लाए और मैं उई में एक दो गोभी लगा लो धीरे धीरे करके ऐसी चीजें अपन लगाते रहो अगर तो भी एक दिन आपको इतना फायदा दे इतना फायदा दे। फायदा मतलब ऐसा नहीं है कि डलियन बांध या भेजिया ऐसा फायदा कि अपन को ताजी सब्जी घर की मिलेगी वो बिना केमिकल वाली
1: बिल्कुल सही
0: ताकि बाजारन में जो मिल रही वह केमिकल वाली सब्जी मिल रही हैगी तो अपन एकदम कतनिया के शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो।
1: सही बात
0: तो ऐसो अपन को महसूस भी होने लगे है गो। तो आप जो कॉन्सेप्ट जो है गो किचन गार्डन को वो भी आप अपना सकत हो।
1: और तीसरी बात हमने सुनी हैगी और अच्छी लगी हैगी कि भौजी बाजार में गई है थी और उनने खूब मना करी कि भैया पॉलीथीन को इस्तेमाल हमें नहीं करने है गो। खासतौर पे हमने पहले भी शुरुआत में बताई थी कि कैसे पॉलीथीन को इस्तेमाल करने से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान है जानवरों को नुकसान है और हमें आपको तो है ही गो जो नुकसान है तो जी बात को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने है गो।
0: तो देखो जा तो बात आप सही कह रहे हैं तीसरी बात जो आपने सीखी हैगी काहे कि पन्नी से अपन को खुद को नुकसान होते है गो अपने ढोर बच्चे जो फिरत रहते हैं बेचारे देखो भी तो का उसे कह नहीं पा रहे हैंगे हैं उन्हें तो जब भूख लगा थेगी सुबह तो पन्नी में बंदो मिला सामान सुबह पन्नी समेत खा जात काहे कि भी गठान तो खोल नहीं सका थेगी।
1: सही बात
0: तो एक तो हमोरन की खुद से गलती जा रही थेगी इमें कि जो भी खावे पीवे को सामान जब अपन बाहर फेंका थेंगे तो एक तो ऐसे ना फेंको बिल्कुल भी पन्नी में बांध के खास तौर से काहे के गन्ना बच्चे जो हैंगे वे पन्नी उठा के पूरी खा ले उठेंगे। तो खावे की चीज अगर हैगी तो आप खुले में ऐसी रखो कि आपको पता हो कि हाँ इतने जो डोर बच्चे रोज आउ थे गो और इतना ही वो खावे के लाने खड़ो होते।

0: तो एक बढ़िया सो पत्थर रख दो, सो ऊपर आप वो खाबी को सामान रख दो और जी में वो ढोर बची हुआ है वो खेओ अपनो चलो जाए। जो नैया के पन्नी में बांध के आपने फेंक दो सो बस वो तो पका है, उखो तो खाबी की वो है भूख है, पेट में जब भूख लगा तो कछु नहीं दिखाता है, सो वो पन्नी समेत खा जाऊ थे। और दूसरा अपन को पर्यावरण से भी इससे काफी फायदा मिले है जब अपन पन्नी को इस्तेमाल कम करेंगे। देखो पहले की समय की अगर बात करें तो पहले अपने जो पुराने लोग हते जो दादा परदादा या नाना नानी हते हमेशा जब भी बाजार जाते तो कहते ला बेटा वो थैला दीजिए बाजार हुए आए। लेकिन अब वो चलन नैया अब का कहते के रंदो ऐसे खाली चले जा रहे हैं उतनी से पन्नी इनमें डांग ले आए तो अपने ही हो रहे हैं कितो ना कितो इन चीज को खराब कर रहे थे। तो अपन को वो खराब नहीं करने हैं, अपन को कह नहीं रहे हम के संगे संगे जो भी ध्यान रखने के अपन को अगर खुली हवा में सांस लेने हैं गो तो अपने पर्यावरण को ध्यान अपन को रखने आए और अपन को ई के हिसाब से चलने आए ना कि पर्यावरण अपने हिसाब से चले वो।
1: बिल्कुल सही की वैसा, और हमने तीन चीजें सीखी सो आपको हमने बता दी है और अब हमारे साथियों ने क्या सीखो है भी हमें बताए कैसे। अब हमारा समय भी हो रहा जा कार्यक्रम शुभ कल संजावे को तो उनने कहा सीखो है गो बे हमें बता सकत हमारे जा नंबर पे।
0: साथी हमारा नंबर है 92-19-20-77-49।
1: और साथी रो आपके कार्यक्रम में जब हम आएंगे तो हम आपको पूछेंगे आपसे कि आपने हमारे जो कार्यक्रम हते उनमें आपने काशी को है वो तो जरूर शामिल हो हमारे जय कार्यक्रम में अपने सुझाव जरूर दे होगे और संगे संगे आप हमें बता भी सकते हैं कि और कार्यक्रम में का अच्छो लगो और कौन विषय पर आपको बातचीत को सुनने हैं तो वह विषय को लेकर हम कार्यक्रम में हाजिर जरूर होंगे।
0: बिल्कुल, तो आप अपन चला थेंगे आज के कार्यक्रम से, फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
2: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
0: लेकर हाजिर हैं आपका कार्यक्रम हम होंगे कामयाब। श्रोताओं आज हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की, कि जो हमारा व्यक्तित्व विकास है उसके लिए हम कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं और जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं आपके लिए अगर आपने सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया तो।
1: क्योंकि देखा जाता है कि जब तक आपका व्यक्तित्व विकास नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, यदि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बातें अहम रहती हैं जब तक जब आप किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप नए करियर की शुरुआत करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमें बेहद जरूरी जानना है, क्योंकि देखा जाता है कि कैरियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें रहती हैं व्यक्तित्व विकास के लिए। सरल परिभाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, शिक्षा, योग्यता, शालीनता, पहनावा, उदारता, त्याग, क्षमा, बौद्धिकता जैसे तत्वों को अपनाकर जो अपनी छवि को औरों से अलग प्रस्तुत करता है उसे ही व्यक्तित्व विकास कहा जाता है।
0: इसके साथ ही साथ जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में यदि आप किसी को भी प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको बेहतर प्रदर्शन करने होगा। इसके लिए आपको किसी को भी आकर्षित करने का हुनर आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो। अब हम आपको बताते हैं कि वह गुण या टिप्स कौन से हैं।
1: सबसे पहला होता है कि संतुलित एवं सुंदर आपका शरीर होना चाहिए। ये आपको बताता है, आपके व्यक्तित्व को पहचानता है, क्योंकि संतुलित शरीर से व्यक्ति की पहचान होती है, जिससे व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, उठने बैठने और कार्य करने की क्रिया का पता चलता है। इसलिए शरीर हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए तथा थकावट और आलस्य जैसे अवगुण आपके शरीर में नहीं होना चाहिए।
0: इसके बाद आपको शरीर की बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिम जाकर सिक्स पैक बनाएं, अपितु ना अधिक मोटा ना अधिक दुबला होना चाहिए। आप नियमित संतुलित आहार लेकर एवं नियमित व्यायाम करके संतुलित शरीर का विकास कर सकते हैं।
1: सुंदरता किसी को भी आकर्षित करने का केंद्र होती है। इसमें शरीर के काले और गोरे रंग का महत्व नहीं होता है। इसके लिए आपको शरीर के नाजुक अंगों जैसे आंख, बाल, नाखून, त्वचा आदि का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके पश्चात साफ, स्वच्छ, कंफर्टेबल और फैशन के अनुसार कपड़े पहने, लेकिन फैशन की आड़ में फटे हुए और बेशर्मी वाले कपड़ों को परहेज करें, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व नीचा होता है। आपको बता देना चाहते हैं, दूसरा गुण आपके अंदर उत्तम विचार होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो आपके विचारों को देखा जाता है कि आपके विचार किस तरीके से हैं।
0: बिल्कुल, और विचारों से ताकतवर कोई और हथियार नहीं होता, यानी कि विचारों से ज्यादा ताकतवर कोई और दूसरा हथियार नहीं होता है। विचारों की वजह से ही व्यक्ति को नई दिशा मिलती है और यह कुछ भी करवा सकती है। अच्छे वातावरण में रहने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, खुली जगह में वायु का सेवन करते रहने से सरलता से ही हमारे मन को अच्छे परिणाम मिलते हैं और वे परिणाम ही हमारे विचारों का निर्माण करते हैं।
1: इसके अलावा आपका विद्यालय उत्तम हो, जिससे आपको उत्तम शिक्षा मिलेगी और आप में उत्तम विचारों का समावेश होगा और साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए विचारों का अहम योगदान रहता है। इसके लिए आपके विचार अच्छे होना चाहिए। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो सामने वाला या इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित होगा और आपके आत्मविश्वास को जगाएगा। आत्मविश्वास का होना ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है और एक अच्छी बात होती है कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हम ये काम को कर लेंगे।
0: बिल्कुल, यदि आपके अंदर किसी काम में पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी उस काम को लेकर से इनकार कर देता है या आपको किसी विषय का पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी उसे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हो, इसका प्रमुख कारण है आत्मविश्वास की कमी। जी हाँ श्रोताओं, इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने गुण अवगुण का विश्लेषण कर अपने व्यक्तित्व के अंदर मौजूद कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अधिक शर्मीले हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, अभिमानी हैं या आप में किसी का भय है तो आपको इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। जबकि किसी इंसान के अंदर मौजूद गुणों से ही उसका व्यक्तित्व बनता है, इसमें आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है। युवा पीढ़ी में इस गुण का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका भविष्य सामने होता है। अतः आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके भीतर आत्मसम्मान, प्रतियोगिता में भाग लेना जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेहतर है।
1: दोस्तों, और भी बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि विनम्रता अपनाएं, बातचीत की कला, सुनना या कम बोलना सीखें। ये सारी बातचीत जो रहती है आपके व्यक्तित्व को निखारती है। ये बातचीत आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी रहती है। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक अच्छे से लोकगीत को सुन लेते हैं, इसके बाद बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और भी व्यक्तित्व विकास के जो टिप्स हैं, व्यक्तित्व विकास के गुण होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
0: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं यहाँ पर एक बढ़िया सा लोकगीत।

0: बाद एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, जहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की। अभी हमने बात की श्रोताओं के आत्मविश्वास होना चाहिए हमें खुद पर। आगे हम बात करेंगे कि विनम्रता अपनाएं। बिल्कुल श्रोताओं, आपकी वाणी में मधुरता का स्वर होना चाहिए, जिससे आप अनगिनत दोस्त बना सकते हैं। इसके ठीक उल्टा अनगिनत दुश्मन भी आप, इसलिए आप कभी भी अपनी शिक्षा प्रतिभा योग्यता को ओढ़ते हुए किसी से बात ना करें, अपितु ऐसे बने रहे कि हर कोई आपसे मिलने की एवं बात करने की चाह रखे। इसके साथ ही साथ आप गुस्से पर काबू रखें और किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक ना बनाएं। मजाक उसी का उड़ाने में मजा है जो अपने को आपसे ज्यादा ताकतवर समझता है। इसी गुण से व्यक्तित्व विकास में इजाफा होता है।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि विनम्रता अपनाए के साथ साथ हमें बातचीत की कला भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने बातचीत करते हैं तभी आपका व्यक्तित्व पहचानता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन व्यक्ति से आपको बातचीत करने के दौरान बार बार आंखें मटकाना, शर्माना, अटकना और मुख मुद्रा बिगाड़ने से बचना चाहिए, और अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। बहुत बड़ी बातचीत होती है, ये एक कला होती है व्यक्तित्व विकास की, ये कला होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, क्योंकि बातचीत के वक्त आपकी एक निश्चल मनमोहक प्यारी मुस्कान किसी भी व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती है। लेकिन आपकी यह मुस्कान नकली या बनावटी ना लगे, यह नेचुरल रूप से शरीर के अंदर से आनी चाहिए। आपकी एक मुस्कान सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपकी सैकड़ों तारीफें ब्याह कर देती हैं। इसलिए आप मुस्कुराने का प्रयत्न कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इसे रचनात्मक कहते हैं। और आप शायरी, लघु कथा, घटना, दुर्घटना, कहावत आदि से अपनी बातचीत में रचनात्मकता शामिल कर बेहतर प्रभाव आप डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे और कई सारे ऐसे टिप्स हैं श्रोताओं, जो आप सबके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं। एवं यहाँ पर हम बात करेंगे सुनना और कम बोलना सीखें, क्योंकि कई बार होता क्या है श्रोताओं के, हम बोलते जाते हैं, हम सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर यह बहुत अच्छी बात है कि हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। यह वास्तविकता हमारी जिंदगी से करीब करीब समाप्त हो गई है। आज हम किसी व्यक्ति की बात कम सुनते हैं पर ज्यादा बोलते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों पर पूरा फोकस करें, और जिस विषय पर चर्चा हो रही हो उससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
1: वार्तालाप के दौरान आप बीच में दखल ना दें और ना ही रुकावट बने, समझदारी से बात करें एवं बीच बीच में आप

0: अपना सिर हिलाएं और जी हां अवश्य कहें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की बात गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि आप जितना हो सके चुप रहें, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले और खुद की तारीफ करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। आप एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बनिए जो जरूरत के वक्त अपनी बात को व्यक्त कर सके। चुप रहने वाले व्यक्ति या कम बोलने वाले व्यक्ति से हमेशा लोग बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति बेहद आकर्षित होकर उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए एक अच्छा गुण रखता है। तो ये बातें रहती हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास को निखारने में बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में आप यदि आप सोचते हैं, ये बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आप सामने वाले को माफ करना या माफी मांगना सीखें, ये भी एक तो व्यक्तित्व विकास का एक पहलू रहता है। इसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी अपमानित आपको करता है, अपशब्द कहता है, बुरा व्यवहार करता है, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा होना ही नेचुरल है, लेकिन कुछ समय बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वह आपसे माफी मांगने आता है और आप उसे मुंह मत मोड़िए और उसे तुरंत माफ कर दीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति माफ करता है जो अपने तन मन से घृणा बुराई कलेश को दूर करना चाहता है, अपने दिल में पवित्र करना चाहता है। इसके ठीक उल्टा, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माफी मांगने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जिसमें सीखने की असीमित क्षमताएं होती हैं वही व्यक्ति माफी मांगता है, और माफी मांगने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है जो सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम रहता है।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा या किसी और के द्वारा कोई गलती हुई है और अगर सामने वाला आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा है तो उसे माफ भी कर दें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप भी उससे माफी मांग सकते हैं। ये हमारे एक व्यक्तित्व विकास की बहुत अच्छी कड़ी होती है जिस पर हम कायम रह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सकारात्मक नजरिया, यानी कि पॉजिटिव सोच हमेशा बना के रखें। सकारात्मक नजरिए से आशा यह है कि इस जीवन में अपने कर्तव्यों, निर्णयों, संकटों, उलझनों, रुकावटों, संघर्षों, दैनिक व्यवहारों तथा अन्य किसी भी कार्य में कामयाब होने के लिए आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। अगर आप निराशा से आशा प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तथा जिंदगी की समस्याओं से विचलित ना होकर समस्याओं का समाधान करते हैं, हर बुराई में अच्छाई की तलाश करते हैं, तो आपका नजरिया सकारात्मक है। इसके ठीक उल्टा अगर जाएंगे तो आप नकारात्मक नजरिए का शिकार होंगे, जो आपके वर्तमान एवं भविष्य के लिए खतरनाक है। नजरिया बुरा होने पर आपको सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी मिलती है तथा लंबी खुशी के लिए आपको सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा, जिससे आप लंबे समय तक खुद को खुश रख सकते हैं और यही खुशी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में निखार लाएगी।
0: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सकारात्मक आपका नजरिया है, यानी पॉजिटिव आउटलुक है आपका, तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी रहती है। इससे आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, यानी व्यक्तित्व जो विकास रहता है वो उसमें एक अहम कड़ी मिलती है। सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी आप पता होगा, क्योंकि व्यक्तित्व विकास में ये होना बहुत जरूरी है। आपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के शो कौन बनेगा करोड़पति को सुना ही होगा आपने। सीखना बंद तो जितना बंद, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीखता वही है जिसमें जीतने की उमंग होती है और जिसका दिल जवान होता है, जबकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सीखना कभी ना खत्म होने की प्रक्रिया है, इसलिए सीखने के दौरान गलतियां ना करें और दूसरों की गलतियों से सीखें और अपनी गलतियों में सुधार करें।
1: इसके साथ साथ लगातार सीखने की अनवरत कला से ही आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जानकारियां हासिल करते हैं और इसी कला से

0: आपका व्यक्तित्व विकास होता है।
1: और आखिरी है, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये कार में योग्यता, ये भी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार एक निश्चय विषय या क्षेत्र का चुनाव कर उस पर अग्रणित रहें और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। जिस विषय को आपने चुना है, सबसे पहले उसमें गहराई तक जाएं, उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त करें। इससे हकीकत में यह होगा कि मान लीजिए अगर आपसे किसी ने आपके कार्य से संबंधित कुछ सवाल किए, लेकिन आप उन सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे आपका व्यक्तित्व लो होता है, यानी कमजोर होता है। अतः आप अपने काम में होनहार बनिए। इसके अलावा आपको देश विदेश के बारे में मनोरंजन एवं ज्ञानपूर्ण जानकारी रखना अन्य लोगों के मध्य आपको लोकप्रिय बनाता है।
0: आगे हम बात करेंगे अगर निष्कर्ष की, तो इस बात में हम आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक में आने वाले हर वह खास टिप्स बताते हैं जिससे आप अपनी कमियों को आसानी से दूर कर सकते हैं।
1: यदि आपने अपने जीवन में यह खास टिप्स नियमित आधार से अपनी दिनचर्या में उतार लिए, तो यकीनन आप खास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के धनी बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह लेख पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, व्यक्तित्व विकास के टिप्स आपको बेहद पसंद आए होंगे। आने वाले समय में हम आपको और भी व्यक्तित्व विकास से जुड़ी बातचीत हम लेकर आएंगे। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो आपको ये जानकारी हम जो दे रहे थे व्यक्तित्व विकास के बारे में, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहती है जब आप किसी के पास बैठते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो व्यक्तित्व विकास होना बहुत जरूरी रहता है हमारे युवा साथियों के लिए।
0: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि जो भी टिप्स हमने आप सबको बताए हैं उन पर आप काम करेंगे, यानी कि अपने व्यक्तित्व विकास में उनका उपयोग जरूर आप करेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर साथियों आप इन सब का उपयोग कर रहे हैं या फिर आपने इस कार्यक्रम को सुनकर थोड़ा सा भी अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव किया है, तो हमें जरूर बताइएगा फोन के माध्यम से, या फिर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जरूर कार्यक्रम में जुड़ के और सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: श्रोताओं, जब कभी ये नंबर अगर ना लगे तो आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ये कॉल लग सकता है। और आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, हर कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं कि अब अपना रेडियो बुंदेलखंड सिर्फ अपने रेडियो सेट पर ही सीमित नहीं है, अब ये ऐप के माध्यम से हर जगह उपलब्ध हो चुका है। तो हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं जिनको रेडियो बुंदेलखंड सुनने में परेशानी होती है, उनको आप इस ऐप की जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि वो आसानी से रेडियो बुंदेलखंड को अपने क्षेत्र में सुन सके।
1: तो अब हमारा जाने का समय होता है, आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात।
0: तब तक के लिए नमस्कार।
1: और चलते चलते आप सुनो इस प्यारे से लोकगीत को।

0: हेलो सहेली, हेलो सहेली, नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारी सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपके पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियो, आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर, और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकती हैं जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, को बोल रही?
1: पार्वती वंश का सगनपुरा से।
0: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हो?
1: दीदी का हमें एक सुना दो एक गीत।
0: हाँ, कौन सा सुना दे?
1: बिल्कुल, मैं चल जाती हूँ तुम्हारी नगर जावा भाई दीवानी में बारी हमारी जावा
0: संध्या सागम को है वो।
1: हाँ
0: बिल्कुल, यानी नो हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी, प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
1: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
0: तो ठीक है पार्वती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत। ठीक है
1: दीदी, सुना।

0: सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: का नाम?
1: पान कुआ है।
0: कितने से बोल रही?
1: मस्तापुर से।
0: अच्छा पान कुआ जी, तो मस्तापुर में क्या हो रहा हो आजकल?
1: आज लोकगीत अपनी पसंद को सुना।
0: ठीक है, तो हम आपको जो सुनवा रहे हैं अपनी पसंद को लोकगीत। ठीक है।
1: हाँ।
0: नमस्कार। नमस्कार।

0: हेलो सहेली,
1: को बोल रही?
0: उमा देवी बोल रहा है मस्ता पैसे।
1: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लोग किस ने आपको?
0: हमें तू माशाल्लाह तुम मज्जा।
1: अरे वाह क्या बात है, तुम
0: पंचांगे और आनो। हाँ वही लोग की सुनने में
1: बहुत बढ़िया, तो हम आपको जरूर सुनवाए जो लोग। ठीक है
0: ठीक है, नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रही थी हमारी सखियों की मनपसंद फरमाइश को, और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो हमारी जो सखियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं, अगर वो अगले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं, तो हमें जरूर कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। जी हाँ सखियों, और आपको कॉल करना है शुक्रवार के दिन। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से जाने की दीजिए अपनी दोस्त वर्षा को आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिरिया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिरिया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करते हैं खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुअन के पोषण पे उनके आहार पे अपन बातचीत करें। दोस्तों बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता के पशु की बात हो रही है, और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार स्वास्थ्य अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखें। सो दोस्तों, पशुओं के लाने अपने आहार पे आगे भी बात करें और उनकी नस्ल पे बात करें। सो ये बातन के संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन लेते फिर आगे कार्यक्रम में। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

जाओ मुए कंगना जैसी पेरे देवरानी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राज्य। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। तो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है। जी हाँ, पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से कर सके, अधिक मुनाफा कमा सके। सो दोस्तों अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुने। जी हाँ, अगर अपन कोनो सो भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरतें। सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते

हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें। जी हाँ, अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें, जिससे बारिश एवं नालियों का पानी, मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने की उपलब्धता का भी ध्यान रखें। डेयरी के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशु पालन में अपने पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशु पालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय आने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आपका पशु कभी बीमार होता है या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पे अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज की मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से होने वाले रोगों के शिकार बन सकते हैं। टीबी जैसे रोगों से एक उदाहरण है। जानवरों के मल में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और उनमें बैठने वाली मक्खियां आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। पशुपालन की सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कृषि उद्धार के लिए किसान हेल्पलाइन जैसी कई सेवाएं शुरू की गई हैं। आप इन सेवाओं का लाभ अपनी भाषा में मुफ्त उठा सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटा 7 दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। सो देखो दोस्तों, जो अपन ने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है
अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले सो। आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे।

आनंदलव ई गीत खुंगा रहते अमूल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों आज के ई कार्यक्रम छिड़जावाड़ा से आपके दोस्त मातदिन भैया को जाबे को समय हो गयो है, सो हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी पर हुई मुलाकात ई कार्यक्रम में ए बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए

और हम जब अपने घर से मतलब श्रीमती लोहा के यहाँ रहते, अब जैसे लोहा के आए तो हमारे मित्र मिल गए और उनने पूछी कि तीन चार जन यहाँ रही उनमें से कौन है तुम्हारी धर्म पत्नी, हमने कही के मटकते आ रही और लटकते आ रही कमर में कर धोनी, बता भी रहे नाम नहीं बता सकता, तीन चार जने हैं उमे भी चली आई सबने कही के मटकते आ रही

बोले कि ऐसे में नहीं आ रही समझ में, बताओ तुम तो स्पष्ट। हमने कही देखो श्रृंगार की बात है, कनहर जैसी।

बोले कि तुम तो जा बताओ पीली साड़ी बारी आए, हमने कि नहीं। बोले नीली साड़ी बारी, बोले नहीं। बोले फिर कौन, हमने कि है। अरे गंजले ठाकुर दई हमई खा, गंजले ठाकुर दई हमई खा।

0: बिल्कुल दोस्तों, मटकत आ रही लटकत आ रही कमर में कर धोनी मोरी बेला कली। देखो दोस्तों, कितनों प्यारो जो गीत अपन सब जनों ने सुनो है, जो सिंगार गीत है। और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों आ सुनते हैं अगले साथी इनके गाय है सिंगार गीत को।
1: नई नई दुल्हन सज गई है न घुंघटा में, नैन धोई कजरा रे, गोरे है गाल

बिल्कुल दोस्तों, गोरे हैं गाल दोई होंठ लाल रेशम से वाल कारे कारे। देखो कितना प्यारा जो श्रृंगार गीत अपन सब जनन ने सुनो है, इस श्रृंगार गीत को आनंद लो है, ये गीत को गा रहे थे रामाधीन आर जी। सो दोस्तों रामाधीन भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इनने तो अच्छो बढ़िया श्रृंगार गीत गा के अपन सब जन को सुना है। अब एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भय श्रृंगार गीत।

केवल लाल ही लाल सिंगार है, सिंगार बहुत से देखे हैं सुने हैं आपने, जो तो लाल है केवल काय के लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल साया पे, लाल लाल साया पे।

जय हर पावन हा हर पावन माहुर जो लगो लाल लाल हर पावन माहुर जो लगो लाल लाल और लाल लाल चुकटन में लाल लाल चुकटन में ककरा है लाल लाल।

लागो है नीको जो लाल बूंदा। देखो कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, श्रृंगार गीत को आनंद लो है। इस श्रृंगार गीत को गा रहे थे भैया रामकुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों रामकुमार भैया जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथी के गायब है गीत को।

0: बिल्कुल दोस्तों, भौजी सजी मोर मोटर सी करसो लो सिंगार मनोरंजन रे भोरा। देखो कितना प्यारा जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लो है। इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। सो आओ दोस्तों फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गाय भाई गीत को।
1: अरे जागोरी बुंदेलखंड की, जागोरी बुंदेलखंड की,

ਤੱਕ ਲਈਏ ਕੰਧ ਫੂਲ ਕੰਗਨਨ ਮੇ ਝੂਲੇ ਗੋਰੀ ਕੇ ਗਾਲ।

बिल्कुल दोस्तों, जागोरी बुंदेलखंड की अजब करे सिंगार, लगत देखत रहिए। सो देखो कितनो प्यारो जो सिंगार गीत अपन सब जनन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लव है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया खूबचंद कुशवाहा जी। आप दोस्तों खूबचंद कुशवाहा जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

एक एक कजरवा कारो के गोरी धना जादू सो डारो। देखो कितना प्यारो जो श्रृंगार गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लो है। अब दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम बता देवे कि ये गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहिरवार जी। अब दोस्तों ये कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को अब जाबे को समय शो हो रहा है। सो दोस्तों अपने दोस्त माता दीन भैया को कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात कार्यक्रम में यही बेरा पे। अब अपने माता दीन भैया को जाबे की अनुमति। नमस्कार।

0: है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सावन करो जात ससारे चैन जिग्या में नैया। ओ नैनन धार लगी असुंगन की रोक।

ही देखत ही हर सा गई जो बगिया, देखत ही हर सा गई जो बगिया सावन में।

चढ़ गए चतुरंगी पर रस में दुल पे उदय चिंदराए। गज मनसुख पर मलखे चढ़ गए सारी लड़का भय सवार सज गए जाहे महुबे के बन में खेलन जाए शिकार सब।

0: तमके उतार दियो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारे के हम आई सुनो
1: के गगरी तोरी भौजी जबई उतर है गगरी तोरी भौजी

सी रहे जा राज दुलारी, अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे कुल को है।

के बहु देखो जी के लड़का बिटिया तुम्हें राम ने दई है हम सबको आनंद भैये ऐसे तो कह रहे के गगरी उतार दिखाए

0: पाँव के वो है, तुम कह रही के दो बेने हैं, हमें नेग में जो नहीं जाना मालूम का जाने क्या वो है।
1: प्राणन से प्यारी हो जाई, ध्यान से सुनियो बात हमारी, ध्यान से सुनियो बात हमारी, काद हो गगरी पे

0: बिटिया अभी सब खुश रहे और दोनों को लड़ की शान बढ़ावे जो ही है एकदम से नेग बिचाने और कछु नहीं जाने और
1: अरे खुशी रहे राज दुलारो कुल को है उजियारो
2: क्या कह रहे
1: अरे खुशी रहे जो राज

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबके दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली सिम।

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। मुंशी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ, आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री चमकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, उसी लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
6: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
5: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी। मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
6: ये लीजिए महाराज।

0: आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
1: जी महाराज।
0: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
1: जी महाराज।
0: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
2: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
3: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
0: भाई वाह,
4: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
0: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
3: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओ बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे।

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बुल्लू मुन्नू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। वो बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
0: देखा कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। बी वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।

0: जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
1: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
0: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
1: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है, समझ गया, ये है गाजर।
0: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
1: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
0: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम?
1: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊँ?
0: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
1: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
0: अच्छा अच्छा बताओ, क्या है जवाब?
1: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
0: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
1: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तब बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार, आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सबने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
2: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
3: अब्दुल रहमान।
2: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
3: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
2: और आपके गाँव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियाँ होती है?
3: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियाँ जैसे लौकी है।
2: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
4: मेरा नाम शांति है।
2: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती?
4: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
2: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
4: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
2: अरे मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है?
5: हमारा नाम है लक्ष्मीबाई।
2: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
5: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देते हैं।
2: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियां खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
6: पालक।

0: खाती हो?
1: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
0: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
2: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
0: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं।
3: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ। फिर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
0: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय
4: बाय।
5: मजा आया ना।

0: तो दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई है भाई, हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है जैसे, तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं, और जब पेड़े सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते।
1: तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हमारी हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक है, तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं, तो कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले। और इसके अलावा की तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद।

0: श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करते हैं। हम तो हैंगे भैया आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जी दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी, जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से, जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें वो जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के भी सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के वो जगह पे पहुंच गए, और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो उसके बारे में तो है कि नहीं। तो अपन एक कार्यक्रम से आज आपको ले चलत हैंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है, लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उके बारे में भी अपन और कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी, काय के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते हैं। ठीक है, तो चलो अपन सैर कर भी चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार,

पाई, कौशल्या की पदवी पाई, गोदी खेलत रहे रघुराई। प्रेम भाव के भूखे भगवन, प्रेम भाव के भूखे भगवन, वीरन तज पाठन अपनों प्यार हो बुंदेलखन। प्रेम भाव के भूखे भगवन, वीरन तज पाठन अपनों प्यार हो बुंदेलखन। भारत माता को हृदय दोहे, दीपे हमें

0: पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोक गीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड, भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी

0: वो आया करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लोहावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी।
1: श्रोताओं, आज हम आपको ले चलते हैं अपनी बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं, तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम जो पुजारी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
2: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से है और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी माँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुमदेव हुए हैं कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की, फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है, वाणी से प्रमाणित नहीं होगा। यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, कुछ मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा के पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है। अच्छा, माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं। और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड

0: हुआ है, बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है, और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है। जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 22 से 51 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं। जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघनासे हु तबहि। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ, जो निरंतर गति में है, और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है, और यहाँ पर 22 से 51 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं, और यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी जी अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं, और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पोताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पे 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया, और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व तो बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए, आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर्ड शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो आप उन्हें यही के हो?
2: यही के।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसे महसूस करे यहाँ जन्म ले के ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कह चाह रहे यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी की उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है, और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना

0: ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से घटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
0: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी को बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
0: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे ऊपर दो मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियां उसमें रामचंद्र बोल रहे हम देखे, और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा।
0: और उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया है।
2: तो साथियों, अभी हमने चनेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से।

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-1417-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9425-1417-26। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारी इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आओ दोस्तों सुनते हैं कहानी को, लेते हैं कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुआ के राजन के कुंवर
2: आओ
1: और एक हते बानिया के लड़का।
2: अच्छा मतलब एक हते राजा के कुंवर,
1: एक हते बानिया के।
2: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ
1: अच्छी तरह से गए उनकी दोस्ती।
2: हाँ
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम काज के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबह को चले जावे।
2: दो ही चलो,
1: दो ही चलो शिकार भी अपनो घोरो मस्के भी अपनो घोरो मस्के।
2: हाँ
1: अब जब वन में पहुँच गए
2: हाँ
1: तो जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुँच गए। अब कल को दिन बरसीत ने फिर कर गया।
2: अच्छा
1: कल के दिन में भी बोले बोले कर ले बीरन बोले। अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल देखे। अब राजन को बस बीरन थे अपने बानिया कितना शिकत बीरन।
2: अच्छा
1: दोनों जने राजा हो बादशाह जिसे बार मार बनवाए दाढ़ी फाड़ी बनवाई बार छटवाए कल कबैया कहाँ किला नहीं छटे कल ससुराले जा रहे।
2: अच्छा
1: अब जब नाव घेगो से नाव को रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सुतकरा है, फलाने के पक्या

0: যা চাইছে ইয়া
1: নাও খোসা পত হে
0: হাও
1: নাও খোয়া তো রাজানি কি কুমার কি সসলার কো পত
0: এসা
2: সো বাস
1: আব বিরানি কে বার বন গয়ে
0: হাও
1: আব রাজানি কে বাদশা কে বননে
0: হাও
1: সো বাদশা কে বার বনে হ্যাঁ
0: সো
1: বাদশা বলি বলি কলে কায় কিতাইগা কা বলি কলে কে ই রাজানি কে রাজা
0: হ্যাঁ
1: বলি কলে বিরান তো যা রো সসলার হে
0: হাও
1: हमारे हम तो क्या चली जावे अरे बोली कर ले राजन के राजा आप किसी ससुराल तो पृथ्वी पे काऊ की है ही नहीं ना
0: अच्छा
1: हाँ हाँ हाँ सो बस बोली कर ले अच्छी सब दे तीन जने हो गए
0: अच्छा
1: के नाव होगा हाँ वासा होगा विजन हो गए अब तीन जने की दोस्ती हो गई बस सब चली ससुराल के जाने तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं ने कुज्जा खुदवाई थी सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब बीरन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई
0: अच्छा
1: हां गली ऊ में से बटी हां हां सो उन्हें लगी प्यास
0: हां
1: सो राजन ने हुक्म ढीलो चलो बीरन पिया पानी तो बीरन गौ पानी पीवे के लाने सुबह ने बीजक बांचो
0: अच्छा
1: बीजक बांचो बा में सू में गली अलग अलग
0: हां
1: बीजन हो बदमाश
0: हाओ
1: बीजन बदमाश हो
0: अच्छा
1: सो बीजन ने का करो किस्ता के पानी पी के बावरी में ओ वा बीजक को भरा दो
0: ले ओ सा
1: अगर हमाय आ गए जब बीजक को जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जो बाचे ले से सम छूट गओ
0: हाओ
1: इसे के हमाज जी से सारे चलेंगे
0: चलेंगे
1: तीनों जने
0: तीनों जने
1: जा पे बीजन बदमाशी के रहवा सुबह सब राजा पानी पीवे गए सो राजा ने पानी पियो जो तमाम भावरी में ही सुबह में बीजक में गिराव लगो सो राजन ने अपने खोबन की उली सुली के भाई
0: धो
1: जाओ और फिर उगे बाचो बाचो भाई सुबह ने उनमें प्रधान पूरो लिखो कि जा राजन के कुमार को रास्ता गई और जा बीजन के कुमार को रास्ता गई दोनों जने बोले ये राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कल पुरखन को बीजक के ने मिटा दिया है हट कर ले के हम अपनी ससुराल देते अपनी ससुराल तो बोले कल उनकी शर्तें लग गई बोले कल जो पहले आज विदा करा के वो जिस बाउरी पे ठहरे क्या दिन कितने को बीत जाए चले गए और भी अपनी ससाय कर ले और जी सताई का नाउ बोले कल जी राजन के संग चले
0: सही है
1: अरे हमारे वर के संग का चले हम सेठ आदमी और राजन के संग जी और हेल्पर चलते हैं कल सो राजन की कुमार और सताई का दो जने जा रहे भी अपनी ससाय चले गए अब सब राजन के कुमार जा रहे से बन कजली में पहुंची तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास
0: अच्छा
1: बोले कल सुताया कब बोले कल के ये राजन के राजा कल हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकल जा रहा
0: है
1: इसे पानी को देखो बोले कल राजन के राजा बारह कोस में ना है पानी ना माए पानी अपन वन में हैंगे बोले कल अरे क्या क्या बोल रहा है ना आपका बोले कल हो महाराज सुबह एक का खैबर पे चली सुबह पे देख के भी लम्बे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चली तो ये कुत्ता दिशा में बगली मर रहा है तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
0: बिल्कुल
1: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर्रा रही और बिन पानी की बगली नहीं देती है पानी जमी हो गए थे बोली कहना चल चल ले जा सुबह लोटा घड़ी ले के और चल अरे खुल जाए सुबह जन में दो पाई खुली से जीत गए कि हाँ फिर बाहर आराम से मिले आराम से बिन नगद चले गए तो उत्तर काकस्ता हाथों के जोन वाली लड़की राजन को ब्याई थी वो नदिया में स्नान कर रही
0: अच्छा
1: उन नदिया में स्नान कर रही थी तो सुताई अक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए बोली कहना सुताई का

0: कहा बोले कल्ले का ये राजन के राजा बोले कल्ले उस तालाब में पानी ये सो ठीक है तुम ले आए बोले कल्ले हम हाथ जाके नाखून से पानी पी लो बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया होता ऐसा जलील होते कौन के मचो सचो भर के आ गया बोले कल्ले महाराज कल्ले वो तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर रही एक तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी तुम तो सब मचो सचो भर लिया वो हम खुद की आसन मर जा रहे अरे बोले कल्ले बगरा भी तो वो पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद वो कल्ले सुधायक का बोले कल्ले कहिए राजन के राजा बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूरी है जब बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को बोले कल्ले कहो उन्हें कही

0: नाव कक्का ने कही के
1: नहीं, राजन ने कही जावा,
0: राजन ने कही जावा,
1: राजन ने कही जावा। उनने फिर कही उनने, अब्बा बोले जल में ठाड़ी जो।
0: अच्छा,
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही,
1: जो नहा रही बा बोल रही है।

0: सच्चा आपका बोले कल राजन की राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल देना।
1: सही है
0: अभी से बोल देना बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ
0: है बोले कल नहीं अबे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे हो
1: हाँ।
0: भूलो मोसा।

0: गलिया लेखो बाता दियो लगे काहू के हरिद्वार जी।
1: इन्हें गली बता दो सो काहू के द्वारे लग
2: पहुँच जाए।
1: अब कहिए हाथ उठा के अगर बता दीजिए। अब वह जल के भीतर हुई। अब इनको समझ में नहीं आ रही जल की जाए। इनको बदन शरीर है कैसे मुँह करने मायक है और पूछ करे इंतायक है कई की। अब जाइए बताया सुनने के बाद माँ से बोल।

0: या बात मिल जाओ।
1: अच्छा
0: वाने मिली ना बताई ना वाने बदन काड़ो जल नीर में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पास अभी कर रही बस साहब उनने किसी गली तो पूछ ही ली।
1: हाँ।
0: गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ तो गांव की लाने तैयार हो। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जो बाने जल्दी पल ली सफरों और सफर पूर के और बाप ने गेल चलिए जो ने ये हती से जात है भवन द्वार सत्य का को देखो तो ससरार सुबने द्वार है उनने अब पहुंची घरे पहुंची घरे सुख गई घरवाओ को बंद। अब भाभी से बोली भी

0: क्या तुम
1: भाव ने ऊंचे कंदीला नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
0: ऐसे
1: और तुम्हारी आ गए चाला।
0: अब लुबग्गा आ गए तुम
1: लुबग्गा। उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
0: ऐसा
1: भाभी से कही। सुबह सुनने घड़ीला उतार के अपने नाश्ता बना दी के लाने तैयारी की। तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला
0: अच्छा
1: बोली कल देखो अपन को कगुआ गेल कुमार बनाए थी।
0: हाँ बिल्कुल।
1: अब भोजन नहीं करने भोजन नहीं करने इसके यहाँ अब खुला खुला थे अब नहीं खुलो आमे तो सलाह सही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की। सब सोने व्यंजन की भोजन बने भोजन बना के और आज्ञा दे दी भोजन की लाना तो दोनों जने भोजन खो गए भोजन खो गए साफ सोने चाहे एक लो चाय खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बना थना ना जवाब ठोको
0: अच्छा
1: ठोकनी ठोकने ना तो भेज कैसे खोले बाबू।
0: हाँ सही है।

0: मिलता थी सरकार के माए कच्ची अब अभी खुल गो के जई है जा
1: हां सही कह रहे हैं जी
0: जब बात है कि होते होते जब बाबा ने बात खोली सो बोल समझ गए सो उनने माता की माटी सरकार के और बस सुता जा काने पे झटपट जो कछु राजन तेरी जो बाबा दी
2: हां
0: और बाप नी बांधी और बस चाची माटी जो कने कमे लोग बाकी कर ले काहे काहे राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल भाज मैंने अपनी चाची धोई वो आपकी धोई तो फिर मैं आया हां
2: जैसे टाइम लगे
0: जैसे टाइम लगे हां बोली कल सुन ले कल सुत्ता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तक जा हुए इस पापन को मिलवा जाने इसको मिलवा जाने सुबह सुबह की सो तक जा हो गए जहां से तरा उनको तो उन्हें भज्जा घूरो कसो सब रात में घूरो कसो सुबह ऊपर को पले चवन पीटने कस दो
2: अच्छा
0: वो पले च पीटने के तक दिन तो गई आगे बढ़ी आगे
2: आओ आओ ये मैं भी दे रहे
0: थे ये भी दे रहे थे ना तुर्की कसे हाँ सभी लोग आओ जाओ तो बस जो राजन का हाँ साफ कल भी हो गए तो राजा का कल तो क्या है कि ऊपर का पले क्या नीचे कस दिया गया अच्छा कस तो उन्हें भज्जा छोड़ चार के जोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे अब आते बेसो निकल के और बस फिर करी तो भाभी पूरा परोस की जनी ने दोहा दो बनी रेशम डोरा पाटे कोरे जले दियो रे चाटे

0: ये देखो रिश्तेदारी है,
1: सही है,
0: और जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुन में गांठ पर
1: जाए,
0: गांठ पर ये जाओ मैं
1: नहीं गए
0: उनके तो रुक गए जो पड़ोस की
1: ने पड़ोस की ने कई जवाब
0: पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो केर वेर को संग है,
1: सही है,
0: बोल बढ़िए जाओ तो उनने हकीसो जैसे कछु पुटिया पर मूत की वही रानास में ले गए,
1: फिर कमाई खोन पाया ले गए
0: मैं वही जहाँ उनकी रानास थी फिर पहुंच गए भाई सतखंडा पे पहुंच गए। तो अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन भी है तो ये भूखी अब रात को है समझ लिया ना हो तो हम भोजन में ले जाए, तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा थाली जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पहनी थी भी तो वो बजो बिस्किया बजो उनने बिस्जा की आवाज की सुनकर मोर भूल गई बन गई और असम दुहा दे रही संत।

अरे भोर जी, अरे अगर ही खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलना नहीं से, लेकिन बाने फिर दो जाकर।

मेरी कामनी। अरे खोलो अरे किवार जी उन खोलो कंस के बार लेकिन उनमें नाव से कही के बार नहीं खुलगी। अब जो जो है सुनो साधु ने साधु ने सुनो दोहा साधु के रामायण से। हाँ।

0: के जी उन्हें संत बजे से साधु जगे बम घले रहे झूझ। अगर इतने में ते बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब पूछे
1: सही है का हो रहा
0: का हो रहा
1: कत्ते दुनिया भगत जा मेरे विश्वना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पतो होगा कि रानी राजा के पास मिल भी गई। अब फिर की दो हाँ कह रही है ऐसी

0: से लड़की वाली रे सो मेरी पे ब्याह जी। अरे ऐसी सासों का काम की हती तेरी कूखन बांझई हो जाती, और ऐसे सब कुछ जाए तो लड़की होती तो परोस मेरी पे ब्याह शादी कर देती।
1: तो
0: ये तो गड़िया है ना आटा सुबह पटक थार जब थार पटक के में भागी आई सुबह अपने मेरे रात को समझ गया कहाँ जा रहा है जो सबीव हो सोने घोरो मस्को चले। सो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहू रहो और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी विदा कर रहे। ठीक है डट गए, खाना खाओ, खाना खा के और पीने सुनने सजाई तो उन्हें विदाऊंगी कई गई में खाना पीना सब और महीना भर पिलाने रखता खा के घरे चलेगी बस आवा बेहतर

अपनी झकावे बारे हकीतों जैसे गांव के बारे में करी तो उनने मार जताई क्योंकि भक्त छोड़ के अब खुद उनने हकाई अब सुताई अब काल है कबाजी ने हकाई तो वे हका के वो वह सब कहीं ऐसी वर्ष चली हुई तो शाम हो गई से एक बमूरा को पुल हो रहे से उतरे बस गए शाम हो गई से बस गए बस के नहीं अब बोले कल्ले सुनो सुता का बोले कल्ले का कल्ले ही पापन को ही छोड़ जाने यही रुकता है अब्बा सुन रही थी बस सुन रही थी सुबह ने कही के ठीक है सुबह सुता अक्का से कही के सुता अक्का ऑर्डर दौरा नहीं है के पति लगाओ सुताई का गए से तीन पात्र लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को ये तीन पात्र कहाँ खोल लिया बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को अरे बोले कल रानी की फार के फिर जमाए रानी की फार के मार फिर अब बस पात्र लग के आई तो खाना खाओ खाना खा के पड़ी पड़ी सोई अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के हैं इसे का कहें जी सुबह घोड़े की पछाई की जो ये रहती एड़ बजट बात बडोर बंदी थी सुबह छोड़ के बाने पीने से मार लाई बडोर कि ये भगे तो जब ये टूटे समय यहाँ का गए हम सो गए आँख खुल जाए तो हमें इसे कचू किया ले सुबह सुनने थी सुबह घोड़ों भंसाई रात भाई को बड़ा सुबह तनों वो तनी बडोर कहीं दूर सो नेक चाबा को ठोको घोरी में सुबह दूर पड़ी सो उनने कही बचे रानी ने

एनर्जी थी हर में बुझा गई हमें। हम न जई गांव के रहे न बई गांव के रहे, अब इस नरवारे के से चले गए। ये अपने भवन को चले गए और रानी ने अति से बात की नस्कू दूध घर वाले और बाने हकाओ हका को रानी को गाड़ी हकाऊ थी मैं हकाऊ थे रानी तो हका जो वैद्य से कची होती तो राजा गिलंड की बाग में भी जा रहा सो अन्य भैया घर वन ना के टूपी माए की बोलनिया टूपी अति जो रानी वो तो मालिन हटी से मालिन गोली गोली कर लेगा। अरे कौन कहा की पाप नारी कहती है तुमने एक मोर रानी ने वो मालिन खुद धरी सोनियारी जी तो राजा की बहू में भीतर कार में बाबा में बीरा दिया जाए अपने अभी तो राजा की बेटी थी तो कछु मोरन को कछु टूटो है तो रही हटी भी तो सुबह तो अपने इंतजाम में अपने कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सुई सुई कच्ची बिलाद दिना हो गए दुकान दुकान सो एक दिन अब उनकी बेटी हती राजा की यानी जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी को जमती जमती नाव तो बेटी को सो बिन बे फूलन की तुला तुला की बात सो मालन रोजी ना डाली लगावे और फूलन को ले जावे राजन ने हकी सोची के अब मालन तो इतने आओ तो हम आज बगीचा घूमे आए तो बगीचा घूमन गए भी सोचे बार राजन की लड़की रहे रहे तो राजन ने सोची कि जितो काशी माशी की तो जाहे नहीं है, है तो को राजा की लड़की तो जैसे कैसे अपने घर पहुंची घर पहुंची सो घर पहुंच पाँच के उनने कही अब्बास से कही मालिन से उनने के माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ अब बादशाह ने अति सो राजन की पिया न्योता बाबे न्योता कौन कौन अबे न्योता पिया।

तो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह की, तो अपने उन्हें थाली लगाई दो, उन्हें परसों बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह की। शोभिन ने सोची अगर बन तो हमारे फलवा लिया उसी बन में न छोड़ लिया उसी महीना करती हवा, तो उन्हें हर सांस लगी। तो बीजन ने सोची कि कोई बात में खरकसा है, राजन की बात में कोई खरकसा है, सुनना उसे पूछी जावा। बोले क्यों खवास रखा? बोले कले कहिए राजा, कले कारण का है इको? राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे। कले ये रानी को वन में छोड़िया और भाग गया। तो उनने अति से घोरो उनने सजो और बीजन ने सजो पहुंचे। बोले कर ले चलो बताओ कि कौन छाड़ में छोड़ी। फिर जो रुख तरह छोड़ी थी वही रुख तरेंगे गए दोनों जगह नाव नहीं गए वे दो ही गए। दो ही गए सो बोले कर ले अब उनने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी वह धर लेंगे। सो मालन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद की बाग में और गए पहुंच गए। सो उनने कही ठीक है उतिया जाके इनने का किस्सा करो कि डीरा दो जन में जैसे उड़ने लग गया। मालिन ने उन्हें घर आए बोले कल्ले क्यों रे कहाँ की हो परदेसी कैसी फिर रहे तुम जगह बात वो हमारे राजा सुन पे तो तुम्हें जान से मारा ले। हाँ सुबह आराम से मालिन को साल तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है और रंग महल में पहुंच गई राजा दिलंग की। अरो कमाओ ने बादशाह तो बदमाश होते ही सो जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें उपद्रव सारे करी। सो मालूम है कि जोर में बहुत राजन बोली कल दो घोड़े वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे उनमें सब नाश करता बगीचा को। सो उनमें छिड़ गया कि ये तुमको राजा बुला रहे हैं। बोले कल जब तभी ऊंचे हटी भीलपुल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़े ले के। बोले उनकी गैल में सलाह हो गई। बोले कल तुमसे बात करे से तुम मूर काट दो और हमसे बात करे तो हम मूर काट लें। बोले ठीक है सुबह गए सो राजन की बगल में एक बोले बैठो बोले बैठो। अब उन हटे एक बीजक राजा गिलन गया कि अगर जो बीजक जी लोग पहुंच गए हम उस लड़की की शादी उसी के साथ कर लेंगे। तो अब उनने की तो दसला हो गए बस सकाय से काम लगाओ। अब वो रानी ने डीरा जाओ डीरा जाओ कि देखो भाई राजा गिलन ने जो बात हो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ। बोली कर ले नहीं ये राजा गिलन को बाग कटे चल जी और जो मकान गिले चल जी। सुबिन ने की तो ठीक है सुबह जो काम लगो सुबह अपनी मजूरी खोने की।

0: करना चाहनी कही कछुआ तुम ना तुम सानो हम झंडा रहा सुबह गए डार सो आराम से गए डार भी के लाने स्तन कुत्ता सलाद में से गिलास पहुंच वो इमेज दाव वो टीम है दवा में जो राजा गिलंत की लड़की सो उन्हें अच्छी सो अब जो खिलाड़ी है तो उन्हें वो लूटा दाव वो लूटा उनमें दाव सुबह ने थल ये गेंद की बल्ला के और बल्ले लूटा हो गई बाद में सुबह सुनने फिर भेजा छड़ गया पकड़ लिया सुबह जब ये गए पकड़ा सुबह देख दाग के कल्ले ये कौन मजबूर हैं ये तो कोई राजा है सर क्यों इसे भूलत कैसे हैं बोले कल्ला महाराज तो नहीं है मजबूर संजीव तो जो राजा पड़ी बोले कल्ले या पड़े बोले पकड़ लिया बोले कल्ले आ रहा चलो अब दुनिया में लग गई थी वो बीजक उनने वहां से लाओ तो पूरो कर ये कब दो मिल रही दो मिल रही नहीं तो भी हटे सो लेकिन भाई फिर उनकी सलाह तो बात गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करे तो तुम काट ले तो भी राजा काउ समाज ना कर गए चुपचाप बैठे ना दरबार में भगिया एक दिन आते बोले मेरे को क्या के पहुंचे गए सो राजा ने कही बोले कल्ले कवि साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो बोले कल्ले के दीदी सुन फिर बार लड़की की शादी करी उनने उनकी रानी होने दी हती बात तो हो गई।
1: देखो दोस्तों जा तो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खो सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

सुनो तो जी काकेरे, अपन खाजी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव। तो सुनो जी काकेरे।

0: बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को भैया अपने काशीराम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाव है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयान की बातें करें और सुने। और एक क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताएं। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाँव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम की पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के, अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सुन बताओ है। और अपन सज्जन ने सुनो है, अब अपन बात करत है रामगोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपना दादा नाव का है
2: रामगोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कागे विवाह दादा
2: क्या नाम?

0: ਜੋ ਪਤੋ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਮਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨਿਵਾੜੀ
1: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। तो अबे आप दादा का कर रहे थे
0: जी? हल्को हल्को काम कर रहे अपने धो बच्ची देखी ना बस।
1: और
0: वर्कर हम करा बस किए काम वाम हम कर देंगे।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
0: परिवार वाहन से का के वो चाहते हो? जब तो जैसी समस्या है तो अपने बता रहे।
1: आप जो बता रहा था बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिक्कतें आने लगा का परेशानी देखते आती है अपन का
0: आपे के? तो देखो ना खाना मुड़ा एक बात देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरे फिराट हर एक बात की मतलब मुश्किल दिखा दो।
1: और वैसे वो समस्या है अपनी?
0: वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहे थे हमें ले आया हम खा रहे
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी जाओ
0: बैठ जाओ जी आप
1: अच्छा
0: अस्पताल जाने।
1: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप क्या कह सकते?
0: सेवा खुशामत सब करा चुके जी वैसे अब वैसे ही है मतलब जो लोग ठीक नहीं है चला फिर कर लेंगे
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका?
0: आप झेल सका मतलब बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खाए तो ठीक ही है। अरे कछु नानिया कछु नहीं तो 10 रुपये 10 उसको तो खर्च है आदमी को वहाँ मान के चलो कछु ना कछु वो 10 रुपये उठा के चल जाते हैं।
1: दिन भाई आपको कैसे कटा
0: था? ढोल बच्ची उनता दिमाग लगा दे सुझारे सुझारे अपने छाने बैठे बस।
1: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं ऐसी?
0: हाँ
1: जैसे का आप बुढ़ापे की
0: बुढ़ापे मतलब
1: दिक्कतें आदमी का
0: दिक्कत तो देखेगा नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांस पा रहे हम मतलब दिखा कगदा नहीं बांस पाऊ मुझे दिखा सकते।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकते हो? खावे पीवे की आपकी का है?
0: खावे पीवे की कोई तकलीफ नहीं आ रही मतलब जो घर में है तो खा रहा।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में वाबे की में का अंतर है?
0: चलो इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती इज्जत नहीं आया और पापा जाना खेली अरे बाबा जी जाया फिर मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारे वाले बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे मिल जाए दूसरी चीज जठानी न मिल गए दीवानी न मिल गए ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो सब्जी अभी के सब
0: जब जो हो सब्जी शांति हो सब्जी प्रेम हो सब्जी सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कभी आपत्ति नहीं है प्रेम है तो सब कुछ मतलब आपत्ति न आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कभी आपत्ति न आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
0: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदार काम प्रेम में उबर का जो काम नहीं कर प्रेम में मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना हो जाए पैसा टका खर्च ना हो जाए
0: हाँ घरे पैसा रहे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा को काम नहीं कर।
1: तो अपनो काके वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करे चजी और कैसे रहे चट जी आपका कंचाऊ सब जनन से आपको काके वो है
0: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे बाप माता की सेवा करे
1: वो बड़ी बात बड़ी बात मतलब शुरू से आप बताओ
0: तीर्थ यात्रा ना कछु
1: यही बात है आप यही बात पूछन चाहो शुरू से बता दो आप आप काके वो चाहते
0: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान को माने सब इज्जत रहे प्रेम रहे लक्ष्मी जी रहे सब मतलब नहीं की रूप है जो बाप मताई को छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो पूरी जी मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
0: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे नहीं करते जा कर रहे हैं जो मतलब है जब क्योंकि चले जाओ पैसे आगे चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं जाता कहा जा रहा है क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है पेंशन बन जाए तो अच्छी बात है।
1: और का के वो चाहता
0: जीव चाहू के आराम चाहू बस मिल जावे पेंशन बन जावे तो पैसा खर्च हो जाओ गए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को संभाले खाने दीवे 300-400 महीना मिले दिए तो अपने उम्र खाद चलाओ
1: ठीक है दादा जहाँ आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके

से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते, कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखबे, चारों धाम करे। और भैया ये तो बातें अपनी अब हती सो सब जन ने सुनी ही है, लेकिन आप लोग जा भी कह रहे हो को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताए, तो अपन और सुनत है एक गीत खो। और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने, और इनने देखो इस शब्द में का कहा गौवा के गोबर मंगाओ, यानी गौ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं। तो भैया अपन सुनो सबई पंच भैया सुने।

हाँ तो भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाएं। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

तो भैया अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम सुनो जी का खेल है। ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसा ही हम हर रविवार को लेके आओ थे ये कार्यक्रम को सुनो जी का खेल है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत हो तो हमें जरूर बतावें, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावें भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हुई, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को। तो नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार हो तो कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरी गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे
2: हैं? दीनदयाल बोल रहे हैं सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं? बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो? ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: जी सर।
1: चलो भैया दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवा है जो गीत। और कहा हो रहा अपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक
2: सर।
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पाए, ऊपर वाले के पाए, और सब बहुने वाले हो गई, पानी आने लग रहा हो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदेली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो? प्रियंका
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: बुलबुल जी की आवाज में।
1: हाँ,
0: चलो ठीक है। अच्छा गीत के बोल बताता है आप?
1: एक गीत कोई गाओ तो सुना दीजिए थोड़ा।
0: अच्छा चलो
1: बोल
0: ठीक,
1: तो हाँ, बोल याद नहीं आ रहा है। ठीक
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनवाए हैं।
1: है भैया, जय राम जी की।
0: जय श्री राम जय श्री राम।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। तो जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का, तो वहां देखो एक उपाय।

के देख दिगंबर शिव शंकर का और भाल चंद्र मुस्काए हैं और टपका अमृत बिंदु धर्म गोशाला पर आए।

नादिया भागा, भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है देखिए। ओ बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सच जाने तिपुरारे अपनी हवा हवाई में।

ऐसा कर दिया। कहना है कि मांग लाल है बिंदिया भाल है कंगना कलाई में और चंद छवि मुख चंद विराज गोरा।

0: बोले शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम।
1: हेलो गुंडल खान नंबर 10 4।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
2: जुगियाई से सतीश साहू जी?
1: जी हाँ सर।
2: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
1: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है?
1: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
1: ओके सर,
2: नमस्कार भैया जी।
1: नमस्कार।

0: प्रवीण भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो वाला भजन सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथे मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही वाला सुना दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनाते हैं।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है 94-25-14-17-26। बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। सो दोस्तों, आप सब जन को आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों, आज की सभा इतनी संपन्न होत है। सो चलत चलत आपों ने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपों ने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सके। दोस्तों, हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन हो गए को समय हो गया है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।